0: हंगार अंगार दो मिंदुर कोरी इकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होकेरे मिंदमो बार गड़ तेरी हूँ
1: हंगार
2: हम एक अन्य दिवे ही राज्य के आडू
3: गाड़ी में इंदा मुंगली वे देख जही मी दिवे ही राज्य के आडू